ये रूप ये निखार सदियों से आयुर्वेदिक औषध विज्ञान इसका आधार रहा है। कील मुहासे और झाइयां दूर कर चेहरे पर एक नई आवाज़ आती है। बीको टर्मरिक आयुर्वेद।